0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर।
1: राज,
2: हे नीता, तुम्हारी मौजूदगी में उसकी मौजूदगी गुमशुदा क्यों है?
1: कौन? ओ सानिया, वो तो सुबह ही गुम होगी, लेकिन आप इतने सुमसुम क्यों हैं?
2: तुम्हारी कजन सोनिया की वजह से, मैं खुद समझ नहीं पा रहा। उसकी एक नजर ही काम कर गई, मैं बता नहीं सकता नीता। वो जिस तरह मुझे देख रही थी, मैं वो आंखें भूल नहीं सकता जिनमें कई सवाल थे। क्या कुछ लिखा था उसके चेहरे पर? So simple, so innocent. और फिर उसका इस तरह चले जाना, I mean, it just left so many questions unanswered, you know?
1: Too much. Oh, wow, Raj, that is so romantic. अगर तुम यही डायलॉग ना सोनिया को कहते तो वो अभी इसी वक्त बेहोश हो जाती।
2: नीता, you've got to help me. मैं उसे मिलना चाहता हूँ, उसे जानना चाहता हूँ।

0: कुछ कहना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि जो मैं फील कर रहा हूँ क्या वो भी एग्जैक्टली वही फील कर रही होगी।
1: 107.9 FM रेनबो, दिल से दिल तक। मैं शुचिश्विता आप सबके साथ, और हाँ हाँ मैं भी वही फील कर रही हूँ जो आप सब फील कर रहे हैं।

सो चुकी हूँ। तुम पर क्या बीती होगी इसका तो शहर में अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन तुम एक बात भूल रही हो सोनिया, तुम भूल रही हो कि जिंदगी अब भी तुम्हारे

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आज के 15 मिनट स्टूडियो की घड़ी में वक्त 107 AIFM रेनबो दिल से दिल तक वो सुन रहे हैं आप नॉन स्टॉप गपशप। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ। और दोस्तों, गर्मी जब बेहद हो जाए, हद से बढ़ जाए, तब इंसान को सिर्फ बारिश के लिए थोड़ी सी जो है राहत की भी ज़रूरत होती है और साथ में जो है थोड़े अपनेपन की भी ज़रूरत होती है। थोड़ा सा चाहिए होता है कि हाँ बहुत गर्मी है, अच्छा निकलते वक्त छाता ले जाना, अच्छा सुनो पानी का बोतल भर दो क्या, और अगर कोई बाहर से आता है तो बस एक ठंडे से नींबू पानी की शरबत, वो काम कर जाती है, है ना। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, जब तपती दोपहर सी थका देती है तो उम्मीद का जो है बारिश, ये हमें फिर से जीना सिखाता है। जब लगता है कि सभी राह शायद बंद हो गई है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है और लगता है नहीं, ज़िंदगी भी बाकी है और हमें अभी मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ है। और इसी नोट के साथ कार्यक्रम का अगला गीत आप सबके लिए, और साथ में अगर हम और आप साथ हैं तो ये म्यूज़िकल सफ़र कभी नहीं रुकेगा। और जो है गानों में वो ताकत होती है कि आपका मूड जैसा भी हो उसे थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा अपलिफ्ट ज़रूर करा देता है।

10:24 स्टूडियो की घड़ी में वक्त, मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ। और दोस्तों, बातें हो रही हैं नॉन स्टॉप गपशप में, और गपशप में आज हम कुछ खास बात नहीं कर रहे, बस अपनी अपनी थोड़ी सी जो है जिंदगी के बारे में बातें कर रहे हैं। और सर जो है ढेर सारे गाने वो हमारे साथ हैं, तो गानों पे फोकस कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, कभी

ध्यान दिया है कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाए ये ज़रूरी नहीं कि मतलब आज ही मुझे कुछ चाहिए और कल ही मुझे वो मिल जाए, ऐसा नहीं होता। हर ख्वाहिश पूरी हो जाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी भी होती हैं दोस्तों जो इंसान को जो है ज़िंदा रखती हैं, मुस्कुराता रखती हैं और उसे पाने की कोशिश में जो है हम अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र को जीते रहते हैं, चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं कि बस वो जो है वो हमारा गोल पॉइंट है और उसको अचीव करना है। किसी के लिए ये कुछ भी हो सकता है, आपको अगर प्यार चाहिए तो प्यार, दोस्ती चाहिए तो दोस्ती, किसी को अपना घर चाहिए, किसी को अपनी समाज में जो है पहचान चाहिए, किसी को मुकाम चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को बस सुख शांति चाहिए और किसी को बस भगवत प्राप्ति चाहिए। जिसे जो चाहिए वो उस एम पे जो है बस रफ्तार लेकर दौड़ते रहते हैं और जो है उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो है अपनी पूरी मेहनत ज़रूर करते हैं। बिल्कुल पहली बारिश की खुशबू की तरह कुछ सपने भी हमें जो है दिल में जो है चुपचाप घर करते हैं और उस उम्मीद में, उसे पाने की ख्वाहिश में शायद आपके आसपास वालों को वो खुशी, वो चाहत दिखाई भी ना दे, बट वो जो है आपकी रूह तक को महका देता है ना।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर। एक चुटकी नुस्खे।
1: स्टूडियो की घड़ी में वक्त और वक्त है चुटकी भर नुस्खे की, एक चुटकी नुस्खे। और गर्मी के मौसम में मैंने अपने सभी प्रोग्राम्स में जो है जनरली बोला है कि खूब सारा पानी पीते रहिए, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है गर्मी। ये नुस्खा तो हमेशा का है और आज कुछ अलग, तो वो ये कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो एक गिलास पानी में चुटकी भर सौंफ भिंगोकर पी लीजिए, शरीर भी ठंडा होगा और मन को भी जो है राहत मिलेगी। इसके अलावा नींबू पानी और बाकी जो भी पानी वाला फल है वो सब भी आप बिल्कुल ले सकते हैं। जितना ज़्यादा पानी के साथ रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना हैवी खाना कम खाएंगे उतना बेहतर रहेगा। साथ ही हल्की बारिश होने की जो है आज संभावना है और जब बारिश हो तो अदरक वाली चाय के साथ थोड़ा सा तुलसी डालकर अगर पीते हैं तो मौसम भी उस मुस्कुरा उठता है, साथ में जो है दिल भी मजेदार हो जाता है। अगर इस गर्मी से थकान आपको जो है चूर चूर करते रहा है और जो है आप बस थोड़ा सा रिलीफ चाहते हैं तो नींबू पानी में थोड़ा सा काला नमक भी मिला सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ताजगी दवा से नहीं स्वाद से भी आ जाता है। कुछ टेस्टी चटपटा सा चेहरे पे खाओ तो बस जो है अलग से चमक आ जाती है, हाँ कुछ अच्छा खाया, कुछ मजा आ गया। सब तो थी सेहत से भरी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी नुस्खे जो आप अपने दिन भर के कामों के बीच में आजमा सकते हैं। अब एक थोड़ा सा छोटा सा नुस्खा जिंदगी के लिए भी, हर बात को दिल से नहीं लगाते, हर बात को दिल से नहीं लगाते, कुछ बातें जो हैं मौसम की तरह भूल जाते हैं, ताकि मौसम जैसे बदलते रहता है आपका मूड भी बदलते रहता है, हर दिन सुबह उठकर कुछ नया सा इमोशन काम करता है, तो इन सब को एक साथ रखकर दिल को हल्का रखकर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि चलती का नाम जिंदगी।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

खबरों की खड़ी कह रही है कि मुझे अब कहना होगा आप सबको टाटा एंड बाय बाय, सुन रहिए साथ रहिए 107.9 AIR FM रेनबो, दिल से दिल तक। आप सुन रहे थे कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप, मैं शितेश मेहता आप सबके साथ।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

0: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: आकाशवाणी कोलकाता के FM रेनबो चैनल पर परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे उस योजना की जिसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। जी हां, आज हम बात करेंगे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजना दलहन आत्मनिर्भरता योजना की। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां अन्नदाता ही राष्ट्र की आत्मा है, और जब बात आती है भोजन की थाली की तो सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि दलहन भी उतना ही जरूरी है, जो हमारे शरीर को ताकत देता है और मिट्टी को भी उर्वरक बनाता है। पर कभी भी हमने ये सोचा नहीं था कि हम अपने देश में इतनी दालों का उत्पादन कर सकेंगे कि हमें विदेशों से दाल न मंगवानी पड़े, क्योंकि लंबे समय तक हमने विदेशों से दालें मंगवाई हैं। यानी कि भारत जो खुद कृषि का देश कहा जाता है, दालों के लिए दूसरों पर निर्भर था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बीड़ा उठाया है सिर्फ उत्पादन बढ़ाने का नहीं बल्कि किसानों को सशक्त करने का भी। साल 2023-24 में भारत सरकार ने एक योजना की शुरुआत की। लक्ष्य था वर्ष 2027 तक दालों में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल।

0: करना, यानी अब हमारी थाली की हर दाल, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, चना हमारे अपने ही खेतों से आएंगे। कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत में दलहन उत्पादन वर्ष 2014-15 में लगभग 17 मिलियन टन था, जो अब बढ़कर 28 मिलियन टन से अधिक हो चुका है, लेकिन खपत अब भी उत्पादन से ज्यादा है। इसी कमी को दूर करने के लिए इस योजना का अस्तित्व में आना जरूरी था। योजना के तहत उच्च उत्पादकता वाली बीज किस्में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। सूक्ष्म सिंचाई और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। खरीफ और रवि दोनों मौसम में दलहन फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ इसका तालमेल भी बनाया गया है। दलहन फसलें सिर्फ पौष्टिक आहार नहीं बल्कि मिट्टी के लिए भी वरदान है। ये फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं और रसायन खाद पर निर्भरता को घटाती हैं। इसलिए सरकार का मकसद सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि स्थायी कृषि विकास भी है। विकसित भारत का सपना वर्ष 2047 को जो विजन रखा गया है उसमें किसान केंद्र में है और दलहन आत्मनिर्भरता योजना उसी दिशा में एक निर्णायक कदम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय राज्य सरकारें कृषि विश्वविद्यालयों और ICAR संस्थानों के साथ मिलकर देश के हर हिस्से में दाल मिशन क्लस्टर बन रहे हैं। यहाँ किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, बीज वितरण और बाजार सहायता भी दी जा रही है। देश के 150 जिलों में पल्स हब बनाए गए हैं। किसानों की आय में औसतन 20-25% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। अब सिर्फ भारत उपभोक्ता नहीं बल्कि दालों का संभावित निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है। वो दिन दूर नहीं जब हमारी थाली की दाल हमारे ही खेत से आएगी, तो आत्मनिर्भरता सिर्फ नारा नहीं बल्कि गर्व का प्रतीक बन जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का यह प्रयास हर उस अन्नदाता के लिए है जो मिट्टी में पसीना मिलाकर देश की भूख मिटाता है। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज की हमारी योजना आकाशवाणी कोलकाता के FM रेनबो चैनल पर दलहन आत्मनिर्भरता योजना।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।
0: जी हाँ दोस्तों, हर रोज आपके लिए ठीक 3 बजे हम लेकर आते हैं कार्यक्रम 3 का तड़का। आज के इस 3 के तड़के में लगाने गीतों का तड़का, मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप सभी सुनने वालों का स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम 3 का तड़का में। आइए शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह की आवाज के साथ।

लिया जाए अगर आपसे सीधा सीधा सवाल, चाहूं मैं या ना। तो हर दिल से एक ही आवाज आती है, हर दिल की चाहत होती है चाहे जाना। और ये जो कार्यक्रम है तीन का तड़का, ये लगाता है गीतों का तड़का। और आज के जो हमारे गीत हैं, आज का जो हमारा तड़का है, जरूरी नहीं कि तड़का हमेशा गर्मा गर्म हो, कभी कभी ठंडे ठंडे तड़के भी इस चिलचिलाती गर्मी में, इस धूप उमस भरी गर्मी में थोड़े से ठंडे तड़के लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए। कुछ ऐसे गीत, कुछ ऐसे गाने जो देते हैं दिल को सुकून। तो चलिए सुकून की दुनिया में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आप सभी के लिए आवाज अरिजीत सिंह की। इसके पहले हमने सुना पलक मुच्छल के साथ अरिजीत सिंह को, और अब सुनेंगे श्रेया घोषाल के साथ।

बात करें अगर हम हवाओं की और पूछा जाए कि हवाएं हमें कहाँ ले जाएंगी, तो इस गर्मी में हवाएं हमें सुकून की ओर ले जाएंगी। जी हाँ, इस गर्मी में जहाँ हर तरफ अलर्ट्स हैं हीट वेव्स के, खुद को सुरक्षित रखें, अनायास घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलें तो अच्छी तरह से खुद को ढक कर निकलें, सिर को खुला बिल्कुल मत छोड़ें, बॉडी को हाइड्रेट रखें, खाने पीने का खास ख्याल रखें, जितना हो सके अधिक से अधिक लिक्विड डाइट पर रहें। और जहां तक बात है तड़के की, तो बेहतरीन गीतों का तड़का लग रहा है 107 FM रेनबो पर, तो इस तड़के का लुत्फ उठाते रहें, गर्मी में ठंड के एहसास को जीते रहें। अभी तक कार्यक्रम में हमने जितने भी गीत सुने उनमें उपस्थिति बनी हुई थी अरिजीत सिंह की, तो चलिए अगला गीत भी कर देते हैं अरिजीत सिंह के नाम, और इस गीत के उस पार लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार कार्यक्रम चलता रहेगा पूरे 4 बजे तक, जिसका नाम है 3 का तड़का।

ना हुई कहने की, आज से मेरे बैंक अकाउंट के जितने भी डिजिट हैं वो तेरे हो गए। खैर, ये तो हुई बात बैंक अकाउंट की और पिन कोड एक्सचेंज की, लेकिन साथ ही साथ इस गीत में एक लाइन आई थी कि बस मेरे लिए तो मुस्कुरा देना। और अगला जो गीत मैं आपके नाम करने वाली हूँ, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, उस गीत में कहा जा रहा है, हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। तो किया क्या जाए, मुस्कुराया जाए या हंस दिया जाए, प्यार को होने से रोक लिया जाए या कि फिर प्यार को हो जाने दिया जाए।

0: अगर इनकी ना माने और मेरी सुने तो मैं कहूंगी हंस पगली जी भर के हंस और हो जाने दे प्यार, क्योंकि तुम हो आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी जिसने पूरा कर लिया है सफर 90 वर्षों का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। रेनबो पर।

अरमान मलिक की आवाज बोल दो ना जरा। जी हाँ, जब हम अपने दिल की बात किसी से कहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इस बात की श्योरिटी चाहिए होती है कि हमारी बात सिर्फ वहीं तक जाए जहां तक हमें उस बात को पहुंचाना है। हम अपने दिल की बातें उन्हीं से कहा करते हैं जहां हम खुद को सेफ महसूस करते हैं, और बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जहां वे बेझिझक अपनी बातें कह सकते हैं। कार्यक्रम तीन का तड़का, पूजा है आपके साथ, 3:50 और 35 सेकंड। जुड़े हैं आप दिल से दिल तक 107 FM रेनबो कोलकाता के साथ। कार्यक्रम में अगली आवाज दीपाली सेठ की।

हुई बात उस गीत की जिसे रश्मि विराग ने लिखा था और जीत गांगुली ने सजाया था संगीत से फिल्म हमारी अधूरी कहानी के लिए, ये कैसी जगह ले आए हो तुम। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी ये वो जगह है जहां से हमारा ये कार्यक्रम 3 का तड़का अपने आखिरी गीत का रुख करता है, यानी कि अब समय हो चुका है, घड़ी की सुइयों का इशारा है कि पूजा बस आज के लिए 3 का तड़का यहीं तक होगी। आपसे मुलाकात एक बार फिर ठीक 7 बजे इसी चैनल पर लेकर छाया लो। फिलहाल दीजिए इजाजत अपनी दोस्त अपनी होस्ट पूजा को, सुनते रहिए, साथ बने रहिए, जुड़े रहिए दिल से दिल तक। आप कितना भी कहेंगे अभी अभी तो मिले हो, अभी ना करो रूठने की बात, लेकिन मुझे दूर जाना होगा रूठ कर नहीं फिर आने के लिए। आज के कार्यक्रम 3 का तड़का का आखिरी तड़का आप सभी के नाम।

0: টেলিলয়ের অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in অথবা টোল ফ্রি নাম্বার 14454 এর মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা লাভ করা সম্ভব।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
2: हम साथ साथ

गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। जुड़ चुके हैं आप दिल से दिल तक और शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम छाया लोग। बुधवार की शाम लेकर हम आपके लिए आते हैं हम साथ साथ, बिल्कुल आपका और मेरा साथ बना रहेगा 9 बजे तक। फिलहाल 7:10 और 35 सेकंड। कार्यक्रम की शुरुआत हुई मन्ना डे की आवाज के साथ। तो कौन सा है वो साथ जो आज बना रहेगा हमारे साथ?

शान से जानते हैं कौन सा है वो साथ, या कि फिर बांध लेते हैं उस साथ को जंजीर से। आप चाहें तो उस साथ को शहंशाह भी बना सकते हैं, और ये आपकी ही मर्जी होगी अगर उस साथ को हम त्रिशूल के बिल्कुल ऊपरी छोर पर रख दें। नायक कहें, महानायक कहें, या कि कह दें गायक, चलिए मैं सारी बातें छोड़ती हूं आप पर और हम सब साथ मिलकर रुख करते हैं आशा भोसले की आवाज की ओर।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप

0: मैंने तुम्हारे गंदे हाथों को अपने जिस्म पर बर्दाश्त किया तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे अपनी मंगेतर रमेश का बदला लेना चाहती थी।
1: कौन रमेश?
0: बहुत चलाक हो ना डॉन, लेकिन पुलिस को उस टैक्सी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिल चुके हैं।
1: ओह, आई सी।
2: डॉन, हम तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं।
1: तो तुम रमेश की मंगेतर हो?
2: कोई गोली ना चलाए, डॉन मुझे जिंदा चाहिए।
0: रिवॉल्वर खाली है डॉन।
1: वेरी स्मार्ट।
0: चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है।
1: करने दो, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
0: इसका मतलब तुम यहाँ से निकल सकते हो?
1: जी हाँ। सोनिया, ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूँ कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है।
2: तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, यह आखिरी वार्निंग है। भागने की कोशिश बेकार है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो।
3: जी हाँ दोस्तों, और मैंने भी सोच लिया है कि अब मैं आज के विषय को कर दूं आपके हवाले, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन हमने पकड़ लिया है डॉन को मुट्ठी में। आज हमारा जो साथ है, हम साथ साथ रहेंगे दो लोगों के, पहला तो अमिताभ बच्चन और दूसरा विजय। कार्यक्रम की शुरुआत हुई फिल्म जंजीर के गीत से, जहां अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम था विजय। सुना हमने शान से गीत, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, वहां भी विजय के किरदार को जिया था अमिताभ बच्चन ने। त्रिशूल फिल्म में भी उन्होंने विजय के किरदार को पर्दे पर निभाया था, और फिल्म डॉन में भी नजर आए थे विजय के रूप में बंबई नगरिया के ये बाबू।

देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

डॉन जिसे 11 देशों की पुलिस ढूंढ रही है, जब हम उसका जिक्र करें और खाई के पान बनारस वाला न बजाएं तो शायद ये डॉन की शान में गुस्ताखी हो जाए। जी हाँ, किशोर कुमार की आवाज में सुना हमने इस गीत को। कार्यक्रम छह लोग हम साथ साथ और मैं हूं आपके साथ पूजा। फिलहाल 7:41 और 10 सेकंड। एक आवश्यक सूचना, सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि आगामी 2 से 3 घंटों के दौरान दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना एवं कोलकाता जिले के कुछ क्षेत्रों में मध्यम स्तर का आंधी तूफान, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज एवं झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। कृपया सुरक्षित स्थान पर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें तथा बिजली एवं पेड़ों से दूरी बनाए रखें। यह एक ऑरेंज वार्निंग है।

मैं ना भूलूंगा फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, मल्टी स्टारर फिल्म, अमिताभ बच्चन, विजय। बात करें अगर अमिताभ और विजय के इस सफर की, तो अमिताभ ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की फिल्म साथ हिंदुस्तानी से। उनकी शुरुआती लगभग सभी फिल्में सुपर फ्लॉप रहीं। एक ऐसा समय आया कि सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन सोचने लगे, शायद मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूं। एक के बाद एक लगातार 12 फिल्में फ्लॉप रहीं। लेकिन इतनी फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी, मायूस होने के बाद भी, उन्होंने मेहनत का सहारा नहीं छोड़ा, लगातार काम करते रहे। और उसी समय उनके हाथ लगी प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर, जिस फिल्म ने उनकी किस्मत बदल दी। इस फिल्म के बाद अमिताभ कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। फिल्म में नाम था उनका विजय। अब इसे लकी चार्म कहें, चांस कहें या क्या कहें, ये तो वक्त ही जानता है। लेकिन अमिताभ पर कई किताबें लिखने वाली एक राइटर ने कहा था कि शायद अमिताभ इस नाम को लकी मानते हैं। फिल्म जंजीर अमिताभ से पहले कई सुपरस्टार्स को ऑफर की गई थी, लेकिन वो दौर था रोमांटिक हीरो का, रोमांटिक इमेज का, और कोई भी हीरो उस समय एंग्री यंग मैन बनने को तैयार नहीं था। हर कोई खुद

0: को सॉफ्ट चॉकलेटी रोमांटिक हीरो के रूप में देखना ज्यादा पसंद करता था। तो ये विजय का सफर विजय के हिस्से ही आना था। इस फिल्म ने अमिताभ को एक एंग्री यंग मैन के रूप में बॉलीवुड में स्थापित किया और समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते बॉलीवुड का ये डॉन बॉलीवुड का शहंशाह बन गया। बॉलीवुड का वो शहंशाह जिसने विजय के रूप में भी, विजय कुमार श्रीवास्तव के रूप में भी खुद को हर किसी का बाप बनने का दावा किया।
1: जो इसी जगह बैठकर गाय भैंसों का दूध दोता भी था, दूध बेचता भी था, और जिसने इस तबेले को इतना बड़ा जुआ खाना बना रखा है, यूं समझ लो आज से तुम्हारा दारू खाना हमेशा के लिए बंद। हम जानते हैं उस पुलिस अफसर ने तुम्हें मिठाई देकर मूली की तरह चबा भी लिया है और खा भी लिया है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि शहर में एक और अफसर आया है जो पुलिस की नौकरी नहीं करता लेकिन काम पुलिस का करता है, जो कानून की नौकरी नहीं करता अपना कानून खुद बनाता है, और उसका पहला हुक्म यह है कि उसके इलाके में न जुर्म अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा और ना ही मुजरिम कानून के सर पर बैठकर नाच सकेगा। अगर तुम्हें अपनी जान से प्यार है तो अपना पुराना धंधा शुरू कर दो। कल जब हम यहां से गुजरे तो वही मुख्तार सिंह का तबेला देखें, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम भी गाय भैंसों की तरह घास चबाते हुए नजर आओगे। तुम देख सकते हो मुख्तार सिंह, हम यहां अपने पैरों पर चलकर आए थे।
0: जी हाँ दोस्तों, थोड़ी ही देर में लेंगे एक छोटा सा न्यूज ब्रेक। न्यूज ब्रेक के उस पार फिर होगा आपके साथ आपका अपना कार्यक्रम छायालोक। छायालोक जहां आज हम साथ साथ हैं अमिताभ बच्चन और विजय के।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक। हम साथ साथ
1: और अपने पैरों पर ही चलकर वापस जा रहे हैं। इस लाठी की हमें नहीं, तुम्हें जरूरत पड़ेगी सहारे के लिए।

0: जी हाँ दोस्तों, सफर को हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से की है शुरुआत। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है
1: रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह।
0: आज के कार्यक्रम में साथ हमारे हैं शहंशाह, जिन्होंने हर जगह विजय हासिल की है। जी हाँ, एक जमाने में सलीम जावेद की जोड़ी की पहली पसंद हुआ करते थे अमिताभ बच्चन, और ये जावेद अख्तर के कहे शब्द हैं कि शायद उन्हें जिंदगी के हर क्षेत्र में विजय हासिल हुई है, इसीलिए उनका पसंदीदा नाम है विजय।

0: नहीं,
1: हम हैं तेरे साथ।
0: बिल्कुल।
1: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरे।

0: बात हो अमिताभ बच्चन की, बात हो विजय नाम के निभाए गए किरदारों की, और जिक्र ना हो
1: पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उमर

0: खान का ना हो, जिक्र ना हो फिल्म अग्निपथ का, जहां से आए थे प्रकाश में ये हमारे
1: विजय दीनानाथ चौहान।
0: जी हाँ दोस्तों, तो शायद ये कार्यक्रम थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। तो चलिए सुनते हैं फिल्म अग्निपथ से रोना लैला और आदेश श्रीवास्तव को।

अली बाबा तो मिल गया 40 चोरों से, लेकिन हमारा जो बाबा है अमिताभ बाबा, वो विजय से मिला। 20 से भी अधिक फिल्में जिनमें विजय नाम के किरदार को जिया है अमिताभ बच्चन ने, मुख्य भूमिकाओं में रहे। जब वो एक पिता की भूमिका में नजर आए पर्दे पर, तब भी उन्होंने अपना नाम विजय कपूर जी ही लिया, अक्षय कुमार के पिता के रूप में फिल्म एक रिश्ता में। अमिताभ बच्चन जो सिर्फ अपनी अदाकारी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सशक्त आवाज और साथ ही साथ गायकी के लिए भी जाने जाते हैं। अमिताभ और विजय दोनों के कॉम्बिनेशन से सजा हुआ, बना हुआ उनकी आवाज के साथ सुनते हैं इस गीत को फिल्म आंखें से।

such. बहुत ही अजीब गरीब होता है ये सच अक्सर। असामान्य अद्भुत कल्पना से भी ज्यादा विचित्र होता है ये सच अक्सर। वो सच जो हमें नया लगता है अनजाना सा, एक झलक दिखाकर चौंका देता है जो हमें, उसे अजूबा मानने लगते हैं हम अक्सर। सच वो भी है जो अलौकिक है, हमारी समझ के बाहर, और उसी का डर लगता है हमें अक्सर। और सच का नकाब पहने हुए कुछ नामुमकिन किस्से आहिस्ता आहिस्ता वाकई सच बन जाते हैं अक्सर। ऐसा ही एक नामुमकिन किस्सा, असामान्य अद्भुत अकल्प अनदेखा अनजाना अपरिचित किस्सा, सच होने जा रहा है एक खतरनाक सच। A dangerous game is about to begin.

0: गेम बिगिन।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

जी हाँ दोस्तों, ये जो दो लफ्जों की कहानी चल रही है, यहाँ सिर्फ दो ही लफ्ज हैं, अमिताभ और विजय। फिल्म जंजीर के इंस्पेक्टर विजय खन्ना हो या कि फिर रोटी कपड़ा और मकान के विजय, दीवार के विजय वर्मा हो, हेरा फेरी के विजय हो, त्रिशूल के विजय कुमार हो, डॉन के विजय और डॉन हो, द ग्रेट गैम्बलर के इंस्पेक्टर विजय हो, काला पत्थर के विजय पाल सिंह हो, दो और दो पांच के विजय हो, दोस्ताना के विजय वर्मा हो, शान के विजय कुमार हो, शक्ति के विजय कुमार हो, आखिरी रास्ता के इंस्पेक्टर विजय सांडालिया हो, शहनशाह के विजय कुमार श्रीवास्तव हो, अग्निपथ के विजय दीनानाथ चौहान हो, अकेला के इंस्पेक्टर विजय वर्मा हो, एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव के विजय कपूर हो, आंखें के विजय सिंह राजपूत हो, गंगा के ठाकुर विजय सिंह हो, निशब्द के विजय आनंद हो, रण के विजय हर्षवर्धन मालिक हो, बुढ़ा होगा तेरा बाप के विजय मल्होत्रा हो, या कि हो झुंड के विजय बासरे। हर बार हम मिलते हैं अदाकारी के महानायक से, सदी के महानायक से, और आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है छाया लोक हम साथ साथ, इसमें हमारे साथ हैं अमिताभ बच्चन और उनका पर्दे पर निभाया गया अलग अलग रंग रूप स्वरूप में विजय नाम। इसी फेहरिस्त में जो अगला गीत है उसे हम सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में, दो और दो पांच से।

अजी ऐसे कैसे छोड़ दें, हमने जहां देखा है, लेकिन अमिताभ बच्चन को जिस भी रूप में देखा है, बेहतरीन देखा है। बॉलीवुड के शहंशाह पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, और ऐसे में एक जानी मानी लेखिका ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि बॉलीवुड में ये परंपरा चली आई है कि जिसका किसी एक नाम से नाता जुड़ जाए, यानी कि एक बार अगर किसी एक्टर की कोई फिल्म सुपरहिट साबित हो जाए तो बार बार वो उस नाम को रिपीट करता है। और इस फेहरिस्त में कई ऐसे हमारे कलाकार हैं जिन्होंने अपने एक ही स्क्रीन नेम को कई बार रिपीट किया है। किसी शाम उन हमारे कलाकारों का भी जिक्र होगा हमारे कार्यक्रम हम साथ साथ में। फिलहाल जब बात चल निकली है किताबों की, तो थोड़ी सी बात पढ़ाई की भी कर लें।

जी हाँ दोस्तों, आज का सबक ये रहा कि अमिताभ ने 20 से भी अधिक, अब कुल कितनी गिनती है ये आप भी गिने और मैं भी घर जाकर आराम से इत्मीनान से बैठ कर गिनूं कि कुल कितनी फिल्में हैं, या हो सकता है कोई फिल्म हमसे स्किप भी हो जाए, बट मोर देन 20, अराउंड 25 ऐसी फिल्में हैं जिसमें अमिताभ ने विजय नाम के चरित्र को रुपहले पर्दे पर जिया है। तो चलिए, अब समय की यही मांग है कि बस आज के लिए कार्यक्रम यहीं तक। दीजिए इजाजत आज की अपनी दोस्त अपनी होस्ट पूजा को। कार्यक्रम छायालोक से होगी आपसे मुलाकात फिर किसी सुबह किसी शाम। तब तक के लिए सुनते रहें, साथ बने रहें, जुड़े रहें दिल से दिल तक। चलते चलते आप सभी के लिए आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की।